रात जिन दिन करकै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणा।

मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिवता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। ऊडे ऊडावे सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया।

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हरे अगमा अगम अपारा। सब त्या वह सब त्या वह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्या वह संतो जी सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हरे को पुरख समाणा।

तू कर कर वेख जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तेत सर्वरड़ै।

मिल सात संगत भज के बलना, सरंजाम लाग भवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा, जप तप संयम

शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं। कबियो बाज बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दै रच्छा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु। आप हाथ दै मोहे बचावहु, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, वो रक्षा निज कर दै करिये। सब बैरन को आसंगरिये, पूर्ण हुए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ। जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझु करे हो रच्छा। राख लिहो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाए प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा।

नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दय जच्छन उपजायो। आदंतिक अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार किसी ही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रण को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंच

सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेथा जाको पेव न पावत वेदा। ताका

पाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ तै लेहो बारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सुवैया

कतेक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तोहे बखानियो। दोहरा सगल

उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा थाल

नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दरगह पाई ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वथ दे जग में उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

जन्म हम कालख धोवै है, सुकहु टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै,

पौड़ी अतुल क्यों तुलिये विण तुले पाया न जाय गुर कै शब्द विचारिय गुण मह रह समाय अतुल क्यों तुलिये विण तुले पाया न जाय।

तिस की कीमत ना पवै, कहना किछु ना जाय। हों बलिहारी गुर आपने, जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाय। जगत मुसै अमृत लुटियै, मन मुख बूझ न पाय। विण नावै नाल न चलसी, जासी जन्म गवाय। गुरमती जागे तिने घर रखिया, दूता का किछ न वसाय। विण नावै नाल न चलसी, जासी जन्म गवाय। गुरमती जागे तिने घर रखिया, दूता का किछ न वसाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कृपालु सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो श्रद्धा प्यार भावना सहित गुरु दरबार दी हाजरी पर रहे हो। आप जिया ने बड़े प्यार दे नाल अमृत बाणी दा कीर्तन भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी तिना दे जत्थे पासों सरवन कीता है। उपरंत जो लड़ीवार गुरदेव जी दी पवित्र बाणी दी कथा चल रही है, मलार की वार उसकी अज अठवीं पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवन कीता है। इस नाल संबंधित तीसरे पातशाह जी के दो श्लोक हैं जिन्हां दी विचार आपां पिछले दीवाना विच कर चुके हाँ। श्लोकां दा भाव तीसरे गुरदेव पिता महाराज ने उस वाहिगुरू दी कीर्ति कि उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं प्राणी सेव आराध जिस दे वस सब कुछ है। दूसरे श्लोक दा भाव सी कि उहदा नाम अमृत है, अमर करन वाला है। जो भी अमृत नाम नूं गुरु द्वारा प्राप्त करता है वह दुखां संकटां मौत दे भय तो मुक्त हो जाता है। अज गुरदेव पिता महाराज जी ने पौड़ी विच जो कृपा कीती है, क्योंकि कई वारी मनुख दे मन विच जदों परमात्मा दे मार्ग दा साधक बनता है, वह धर्म दे मार्ग ते तुरदा है, वाहिगुरु दी कीर्ति करदा है, वाहिगुरु दे प्यार विच तुरदा है, साधना करदा है, ते मन विच किते ऐसा ख्याल ऐसा वलवला आ जाए कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु दी गमता किवें प्राप्त होवे, उन्हूं पाया किवें जाए, उन्हूं जाणिया किवें जाए, तां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी साधक दा इह भुलेखा दूर करदे ने कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जो महान है, जो अतुल है, जो अमित है, जो अगोचर है, उसनू मन बुद्धि दे वस विच कदी भी नहीं लियाया जा सकता। वह साडी बुद्धि दे अगोचर नहीं, वह साडे ख्यालां दे अधीन नहीं। हां वह गुरु दी कृपा दे नाल, गुरु दी बख्शिश दे नाल उहदे प्रेम नू माणिया जा सकता है, मत दे जोर नाल उहनू जाणिया नहीं जा सकता। यह गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने अज पौड़ी विच कृपा की कि अगम है, उन्हू गुरु कृपा गुरु शब्द द्वारा बुझिया जा सकता है, ते जेडे गुरु शब्द द्वारा वाहिगुरु की कृपा के पात्र बन जाते हैं उन्हों का अमृत खजाना बरकरार रहिंदा है। मनमुख गाफलताई विच अपने अंदर का रस गुवा बैठता है, अंदर का खजाना लुटा लेंदा है, जिवें किसे सुत्तिया कोई चोर घर नूं चुरा लैंदा है। गुरु कृपा करे आपां इस पौड़ी दी विचार कर सकीए,
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ।

संसार जगत के अंदर मनुख जदों भी दुनिया की समझ या दुनिया नू समझन लगता है वो अपनी मत तो सहारा लेंदा है, अकल तो सहारा लेंदा है, सब कुछ जानता है, समझता है, परखता है, फिर उसनू अपनाउंदा है। ज्यादातर जा दुनियावी रूप या दुनियावी समझ है, पर धर्म की दुनिया के अंदर गुरुदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है कि प्रभु प्रति मनुख दे अंदर जे ए भाव होएगा ना कि मैं उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नू मानना है, उस नू मानन वाला ही असल अर्थां विच उनू जान सकता है। जे केवल ए मनुख कहे भी मैं परमात्मा नू रब नू जानना है, उसनू मानना नहीं, शब्द दो ही ने, जानना ते मानना। जानन दा अर्थ है कि फोकी अकल दे घोड़े दौड़ा करके केवल मत द्वारा अपनी हंगता द्वारा कोई ऐसिया तकसीमा जरबा ला करके परमात्मा दे प्रति खुशक ज्ञानी बन जाना। हो सकता है वाहिगुरु दे प्रति, परमेश्वर दे प्रति, रब दे प्रति, धर्म दे प्रति वो बहुत व्याख्यान कर दे, पर गुरुदेव जी कहिंदे परमात्मा दा जानन वाला, जानकारी रखन वाला वो परमात्मा नू मान नहीं सकता। पर जिसने परमात्मा नू मान्या है हिरदे तो प्रेम दे नाल, भावना दे नाल, मानन वाला परमात्मा नू सच्चे अर्थां विच जान सकता। जिसने मान लिया वो आप मुहारे जान लेंदा, पर कल्ला जानकारी रखन वाला उसनू मान नहीं सकता। यह तो इस तरह है जिवें कोई भौरा फुल ते बैठदा है, वो इस तरह नहीं बैठदा कि इहदे अंदर की है, कित्थों आया, रस मकरंद किवें आया, बस उहदे अंदर तड़फ है, उहदे अंदर प्यास है, उहदे अंदर शिद्दत है, वह फुल ते मकरंद ते बैठदा है, उहनू चूसदा है, उहदा मानना ही दसदा है भी इहनू इहदे प्रति बहुत वड्डी जानकारी है, भावें उहनू व्याख्या ना करनी आउंदी हो, भावें उहदे बाबत उसनूं दसना ना हुंदा होवे, पर उहदा उहदे प्रति मिट जाना, उहदे प्रति अपना आपा निशावर कर देना, इस तों वड्डी जानकारी उहदे प्रेम दी, उहदे प्यार दी होर की हो सकदी। कोई पतंगा है वह दीवे बारे कोई बहुती जानकारी नहीं रखता भी कौन जगाएगा, कित्थे जगेगा, किवें इहदे च की पैंदा है, बस नहीं, सिर्फ उहनूं लाट बलदी दिखदी है ते उस लाट बलदी ते आकर के वह अपना आपा परवाना कुर्बान कर देंदा है, क्योंकि ओदी रोशनी नू मानदा है। मानन वाले मर मिटदे हन, अंतर आत्मा तो अपना आपा मिटा देंदे ने, ते आपा मिटाण वाला ही असल अर्थां विच जिस प्रति अपना आपा दे रहा हुंदा है उसनू जान जांदा है, उसनू मान जांदा है, उस तो बिना नहीं। इस करके गुरु साहिब जी ने परमेश्वर प्रति

मान लो कोई पदार्थ है, खाण पीण वाले पदार्थ ने, असी उन्होंने तोल के, असी उन्होंने गिन के, असी उन्होंने मिण के अपने पास रखते हैं भी इन्ने किलो है, इन्नी मिणती है, इन्नी गिनती है। वस्तुआ का आकार होवे तां उह तोलियां मिणियां गिणियां जांदियां ने, पर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा प्रति सतगुरु जी कहिंदे ने भी उहनूं किवें तोलेगा, वह कोई ठोस पदार्थ नहीं, किवें उहनूं मिणेगा लीटरां विच गैलनां विच, क्योंकि वह तरल पदार्थ नहीं, किवें उहनूं मापेगा जिवें धरती मापी जांदी है, वह तां कोई ठोस पदार्थ धरती वाला है नहीं, उहदा ते कोई आकार नहीं, वह अतुल है। अतुल दा अर्थ है उहनूं तोलिया नहीं जा सकता किसी भी छाबे दे अंदर, किसी भी तकड़ी दे अंदर, किसी भी तराजू दे अंदर। अतुल क्यों तोली है, किवें तोलीए फिर, क्योंकि उहनूं जानना ते है, उहनूं समझना ते है। उहदे बराती गुरु साहिब जी कहिंदे ने उहनूं माण, उहनूं प्यार कर, पर जिहनूं माणना है, जिहनूं पाणा है, उहनूं जानना ते पएगा। गुरु साहिब जी दी पावन बाणी विच इक बचन आउंदा है, भगत जी का पावन बचन है कि जे मैं उसनूं जाणा ते ताई उसनूं माणा, वी बचन कहिंदे उन्होंने, जो देखा तो गावा तो तन जन धीरज पावा, कि जे मैं उन्हूं देखा, देखा दा अर्थ असीं इत्थे लै लईए भी उहदे बाबत थोड़ी बहुती मैनूं समझ होवे, जानकारी होवे, ते ताई मैं उन्हूं गा सकदा हां ना। पर गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे वो अतुल है, उन्हूं तू जान तोड़ नहीं सकता। केवल इंसान नहीं, असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का एक बचन पढ़ते हैं, दतार पिता महाराज जी ने तो इथों तक बचन किए, नारद से चतुरानन से रमना रिख से सब हूं मिल गायो। अतुल है, कहिंदे तोलन दी बिरती लै करके वड्डे वड्डे ऋषियां ने, चतुरानन दा अर्थ है चतुरमुख वाले ब्रह्मा ने, रमना रिखी वर्गिया ने, नारद से चतुरानन से रमना रिख सब हूं मिल गायो, वेद कतेव न भेद लखे सब हार थके हर हाथ ना आयो। अतुल है, कहिंदे वेदा ने, कतेबा ने, सिमरतियां ने, शास्त्रा ने, लखे दा अर्थ है जानिया नहीं, उन्हां कोल पूर्ण तौर ते दस्या नहीं गया भी वाहिगुरु परमात्मा की है। वेद कतेब न भेद लखे सब हार थके हर हाथ ना आयो। अगे दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने भी ना उमापत, उमापत भाव उमा दा पति, इंद्र वर्गे, शिव वर्गे, ब्रह्मा वर्गे, नारद वर्गे, कह लगे किसी ने भी उहदे भेद नूं जाणिया नहीं, फिर की कीता जाए। गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करदे, ए भाई जिस नूं नारद, चतुरानन, उमापत, शिव, ब्रह्मा वर्गे नहीं ना जान सकते, बस की कर, हे जीव उन्हूं अपने हिरदे विच धारण कर लै, हिरदे विच मान लै, हिरदे विचों उन्हूं प्यार कर। जे तू उन्हूं अपने हिरदे विच रखेगा, हिरदे विच परोएगा, वह परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर तेरा हो जाएगा, तू उन्हूं पा लेंगा, तू उन्हूं मान लेंगा, ते मनना ही सब तो वड्डा जानना है, उहदे तो बिना होर नहीं। होर भावे सारे आहार तू करदा रहे, सब कुछ कर लै, पर गुरदेव जी कहिंदे ओ परिपूर्ण परमात्मा बेअंत है, बेअंत है। असी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा एक पौड़ी लईए, जपजी साहब विच सतगुरां ने इह सारी पौड़ी दी उह पौड़ी व्याख्या कर दी वी गुरु कृपा करे ते बुझिया जा सकदा। इत्थे बुझण दा अर्थ समझ मत वाला बुझना नहीं, इत्थे बुझण दा अर्थ फिर उही है वी उहनूं माण लैणा, उहदे प्यार विच अपना आपा उधेल देना। ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जपजी साहब जी की पौड़ी विच एक कृपा करते हैं, पहला उहदे अतुल की व्याख्या करते हैं, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निदान, गावी है सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाए। एक नाद शब्द राही, शब्द ता फिर ज्ञान, ते ज्ञान तो बाद फिर ध्यान, ये तीन चीजा ने ना। पहला किसे धुन नू सुनांगे, नाद सुनांगे, शब्द सुनांगे, फिर उहदा ज्ञान उहदे वल ध्यान रखांगे, सुरत जोड़ांगे भी इहदे विच है की,
ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਾਲਾਂਗੇ।

जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी सारे ही संतां दे योग हो जो अमृत वेले सतगुरु जी दियां हाजरियां भरियां ने। सतगुरु जी रहमत करन सभना जियां दियां हाजरियां दर प्रवान करदे होए इसे तरह अपने पावन चरण कमलां दे नाल जोड़ के इस जीवन नूं सफलियां कर देण। सतगुरु जी ने अज पावन तख्तां ते प्रकाश मन हो करके जो हुक्मनामे की दात बख्शिश कीती है वो राग सूही दे विच पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की पावन रसना तो उच्चारण किया हुआ है। ये पावन शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन अंग 763 और 764 के उत्ते सुभायमान है जी। सतगुरु जी रहमत करन इन्हां पावन हुक्मां अनुसार सानू जीवन जाच बख्श देन तां जो लोक सुखी परलोक भी सुहेला हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुण सब तो पहला संपूर्ण श्री सुखमणी साहब जी के पाठ होणगे, उस तो उपरंत नितनेम दियां पंजां बाणियां दे पाठ होणगे। महाराज जी कृपा करन, शुद्ध बाणी एकाग्रता सहित पढ़न की दात बख्शिश कर देन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, श्लोक एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आद गुर ए नमै, जुगाद गुर ए नमै, सतगुर ए नमै, श्री गुरुदेव नमै। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमराओ जस विसुंबर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर, कीने राम नाम एको आख्यर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एकै दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागौ पाए। प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन कृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किश सूझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ कौ सिमरै से तनवंते, प्रभ कौ सिमरै से पतवंते। प्रभ कौ सिमरै से जन प्रवान, प्रभ कौ सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ कौ सिमरै से बेमोहताजी, प्रभ कौ सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ कौ सिमरै से सुखवासी, प्रभ कौ सिमरै सदा अबिनासी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ कौ सिमरै से पर उपकारी, प्रभ कौ सिमरै तिन सद बलहारी। प्रभ कौ सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ कौ सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ कौ सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ कौ सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ कौ सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ कौ सिमरै बसै हर नेरे। संत किरपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग।
प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुन कार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमर ऐसे जन जिन कौ प्रभ माया नानक तिन जन सरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चह कुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिता सोत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महा भयान दूत जम दल तय केवल नाम संग तेरा चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जप हो मन मेरे नानक पावह सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करूरी बंध न परै हर का नाम जपत निस तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिहे मार्ग इहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइए नानक गुरमुख परम गत पाइए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तय पार पराही अनक बिगन जय आए सुंगारै हर का नाम तत्काल उधारै अनेक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावै बिसराम हौ मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जप हो मन रंग नानक पाइय साध कै संग जिह मारुग के गने जाय न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जेह पैंडै महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महा पयान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम जह त्रिखा मन तुझा करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन बिसराम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बिबेक हर का नाम जन को मुकत जुगत हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै न भंग हर का नाम जन की वडयाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग वड पागी पाईय संत की सेवा नाम प्याईय नाम तुल काश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमै कर राती वर्तनेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी है एक बार नौखंड प्रथमी फिरे चिर जीवै महा उदास तपी सरती वै अग्न माहे होमत प्राण कनक अशव है वर भूम दान
निवली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तौ पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम संसर कश नाहे नानक गुरुमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ दे छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करे दिन सो अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहु न बिखिया टर जल धोवै बहु दे अनीत सुख कहाँ होए का ची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊचे नानक नाम उदरे पतत।

ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਨ ਸਹਿਉ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਜੋ ਦੀ ਸਹਿ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਉਹ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇਹ, ਤਾਖੋ ਹਾਥ ਨ ਆਵੇ ਕੇਹ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਭ ਅਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਕ ਹਸਤਾ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੂ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋਹਿਰੈ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸੁਆਦ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੁਤਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪਹੇ, ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਬਿਰਤੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਤੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਨਰਾਰਤ ਦਾਮ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸਿਓ, ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਾਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਡ ਲਾਵਤ। ਚਾਨਣ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਕ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਨ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਾਨੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤਨ ਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਨ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਏ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਥ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੂ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛੇਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਮਨ ਸਾਸ ਸਾ ਸਿਮਰਹੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾਉ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ, ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਧਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ। ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਇੱਕ ਅਲਖ ਹੈ, ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਹੈ ਪੁਨ ਬਹੁਦਾਨ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਧ ਸਾ ਚਿਤਾਰੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਥ ਲਾਗਹੁ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਸਹਿ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉਰਾਚ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਾਪ ਸੋਏ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਓ, ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ।
प्रभु कृपा ते होय प्रगाश प्रभु दया ते कमल बेगास प्रभु सुप्रसन्न बसाय मानस होय प्रभु दया ते मत उत्तम होय सर्व निधान प्रभु तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लागो तित लगे हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु तावै साध संग असथित मन पावै साध कै संग माया ते पिहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बडाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचरला है साधु कै संग अजारसा है साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब ने सतारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जन्म साध कै संग नहीं कछु काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलूकत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिशुरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ साध कै संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पाए आज्ञाकारी साध संगत पही हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जेता सुनै तेता बखियानै साध की उपमा ते हो गुण ते दूर साध की उपमा रही भार पूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक सुबिन कोय नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्ब कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राजरंक को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यों बसदा कू खुदै कू चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय प्रगास जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पहया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा
ब्रह्मज्ञानी कह हुए सो भला, ब्रह्मज्ञानी सो फल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी कह एक कह रंग, ब्रह्मज्ञानी कह बस है प्रभ संग, ब्रह्मज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी कह नाम प्रवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कह घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथया न जाय अध्याखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी साध जीव है नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारै जो अंतर नाम, सर्वमय पिखै भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल निसतारै, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, परत्रय रूप ना पिखै नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत, कारण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरप्रसाद बिख्या पर हरै, मन की बाशना मन ते तरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत होवे नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा ने बाछ है, केवल भागत कीर्तन संगराचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधय, राम नाम आत्म मैं सोधय, राम नाम सार रस पीवै, सो पंडित कह उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सुखम मैं जाने असथूल, चहुरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर नाम जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारे, पश प्रेत मुग्ध पाथर को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितना पाइए धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास तरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तय नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख काटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो व्रताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राख है, तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभ भावै सोई फुन होग, पसरे ओ आप होए आनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी
ਕਈ ਕੁੱਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮੇ ਉਦਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੂਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰਹੂਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋਈ ਰਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨ ਕਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮ ਮਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਹੇ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸ ਤਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨਿਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁਜੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਭੈ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿੰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੁੱਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿੰਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਨ ਤਨ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੁੱਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਾਧ ਸਾਧ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੁਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੀ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਤੂੰ ਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛੁ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਇਆਲ, ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾ ਬਣਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ,
कबहू होए बहै बड राजा कबहू पेखारी निज का साजा कबहू आप कीरत में आवे कबहू भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावे तिहान कबहू तट तीरथ इसनान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक ज्योन भरमै परमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे ज्यों प्रभ भावै तिव नचावै ज्यों तिस भावै सोई होए नानक दूजा आवर न कोए कबहू साध संगत ए पावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जोवनवंत सो होवत विष्टाका जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जून परमावै धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुकत अगै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै तिरन समान काश संग न जावै बहुलास्कर मान को ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदाए आप अहंकारी धर्म राय तिस करे गो खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कूट कर्म करै हों तारे श्रम पावै सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब की रीन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते काश होए तब इस कहो सुख नाही कोए जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारै को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हों छूटै सहस खटे लख को उतावै त्रिपतन आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या की करै नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्ब सुख होए बटभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो केश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बुझे देखै करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै ना बिनसै आवै न जाए नानक साध ही रहा समाए आप उपदेशै समझै आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन बिसथार सब काश उस कहो करने हार उस ते भिन कहो किश होए थान थनंतर एक सोए आपने चले तो आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मध्ये किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै संतन के दुखन सर्प ज्यों पाए संत के दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए
संतन कह दुखन तृष्णा मैं जलय, संत कह दुखन सब को शलय, संत कह दुखन तेज सब जाए, संत कह दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता ओए पी गत पाए, संत का निंदक महात ताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महात यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखी यार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते तरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे तन लय मिलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी कौ उद्यान प्रमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवरन रखन हार, नानक संत पावे तन लय उबार, संत का दुखी एवं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ईंधन नहीं तरपै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगा मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मर ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख ना त्रष्ट है कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटा कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घाट तिस क्यों करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास की रास, सब कछु वरता तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़पागी नानक जन से सलोक, तजो सियानप सूरज नौ सिमरौ हर हर राय, एत आस हर मन रखौ, नानक दुख परम पौ जाए, अष्टपदी मानुक की टेक वृथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिया रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लाग आए, मर रख है को आप, मानुक कह किश नाही हाथ, किसका हुक्म बूझ सुख होए, किसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बेगन न लागै कोए, कुस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गने संसार, मान तान मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै, एत ओत कियो सोजी जानै, नाम जां संग नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिनै निरंजन जानिया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग त्यो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तेसा है न लागह दुख, जिस को हार प्रभ मन चेत आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बूझिया, जब देखो तब सब के शमूल, नानक सो सूखम सोई अस थूल,
नह किश जन्म नह किश मरे आपन चले तो आप ही करे आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनेक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहे ब्रह्मांड अलख अभेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सुसुभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पहि निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करे बड़ भागै नाम जपत पावै बिसराम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किश करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसाय हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करणे हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उनहु बन आए आप सुखो आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकर सिमरन उदरिया नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अभिनाशी प्रभ आपे आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे किश काम गत नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किश तिस का दिया दरब है अत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावै जे को होए बहे दतारो तिस दिन हर जन गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थम है थमन त्यों गुर का शब्द मन है अस थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरह प्राणी गुरु चरण लगत निस तरह ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाशा उतूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइए पुरब लेखे का लिखिया पाईए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो काश करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बरस आई तेरा संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय मैं तोल लाद के बसंत संगचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल धन धन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार गरला वापार है नानक ताकै सद बलहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो शनान साधु प्रजाइय कुरबान साध सेवा वडभागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक विघनते साधु राख है हर गुण गाए अमृत रस चाख है ओट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक को जीवल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे प्रभ लिखे का लहना पाहे सब किश तिस काउ करने जोग जो तिस बिंदु सर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए ते हो लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत सची दृष्ट साचा आकार सच वरत साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केश त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मै राख मानुक की तू प्रीत त्याग तिस दे पर नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए
ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੋਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਨਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਣਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਤਿਹਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤੇਹੋ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨ ਆਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਾਲੇ ਤਕਰੇ ਕਿਨ ਮਾਹੇ ਪੂਰ ਰਹੇ ਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬੰਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਪਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸਾਇਆ ਸੁਆਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੁਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹਾਇ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਬਦ ਹਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਬਬੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਰੱਬ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ
अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर रखै, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात रखै, ताकि गत में तो कोई ना लाखै। प्रभ के सेवक कौ को ना पहुँचै, प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया। निकी किरी मैं कल रखै, भसम करै लस्कर कोट लाखै, जिसका सास न काटद आप, ताकौ राखत देखर हाथ, मानस जतन करत बहु पहांत, तिसके करत बिरथे जात, मारे न राखै अवर न कोए, सर्ब जियां का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी, बारंबार बार प्रभ जपियै, पी अमृत इहु मन तन तृपियै। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस केश अवर नाहीं दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जान त्रिपताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। बोलहु जासो जिह बा दिन रात, प्रभ अपने जन की निंदात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने सिउ रहे सुमाए, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो। आठ पहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओटले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्श सब पाप मिटावै। आवर स्यानप सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवण जाना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक। सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिस का नाऊ, तिसकै संग सिख उदर है, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुरु सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बिकार ते हटै, सतगुर सिख कौ नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल सुमारै, गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै। आपस कौ कर काश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद तिहावै, मन बेचै सतगुर के पास, ते सेवक की कार्ज रास। सेवा करत हुए नेह कामी, ते सुकाओ होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन मनै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्ब निधान जी का दाता, सर्ब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक कहे आप नहीं कश परम, सहस्याण पलाया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दुर्गह गवे। सुन कर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर आख्याओ जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए। जिह बा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूरन बबेक, काहू बोल ना पहुचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनेक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है। सत बलहारी सत गुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण तास।
आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मुँह माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद पहया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पाउ चूका निरपव होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका साध तिन कृपा तहारी साध संग जप नाम मुरारी थेत पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियोही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगास साध कै संग राच रचना अपनी कल तहारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चालै बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल हृदय में उर तारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वथ ए तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंड उठ तावै सो धन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करै भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी अनक उपावे रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्ब निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रबोधो हर कै नाए दहद सुभाव ते आवै ठाए ताको बेगन न लागै कोय जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाहो बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अबिनासी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पावना छूटन हारे सिमरत सासत बेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल सती रहता ना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बिसथार इनते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ अस वारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना ना बिसार नानक पशुताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हार हो चीत चरण कमल रखू मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपहौ अवरा नाम जपावहौ सुनत कहत रहत गत पावहौ सार पूत सत हर को नाऊ सह सुभाए नानक गुन गाओ गुन गावत तेरी उतर सुमैल बिन सजाए होमै बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड़ सियाण पसगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी सांच करो व्योहार इहां सुख दरगा जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मान तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहे ओ प्रभ्याप अनक विसथार एक ते पहे एक आराध प्राशत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपति जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे सरधा पूर
सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो, चरण कमल सिउ लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एक आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोय, जिन चाखिया से जन त्रिपताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजै चाउ साध कै संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग, बड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुरु ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, ऐश पुनी सरधा सब पूरी, रव रहया सतसंग हजूरी, जिसका सातन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल ना पहनै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुरु प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुरपुरै तत इह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन तिहाया, साजन संत करहो एहो काम, आन त्याग जप हो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो, आप जप हो अवरह नाम जपाव हो, भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन होसी शार, सर्ब कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए बिश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जप हो गुण तास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ, नेत्रों पेख दर्स सुख होए, मन बिगसै साध चरण तोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस्त दीजै कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्ब कटा करत प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमुख हर के गुण गाए, अनक राज भोग बड़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सो करनी सोभा धनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत,

अष्टपदी। जब अकार एकाशना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सुख कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर तीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी। जब एक हार अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव साकत कहो कित ठाए। जब आपे ही आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अभिनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अब

जय स्वरूप केवल जगदीश, तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसह भूक कवन त्रिपतावै। करन करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पहाई। जह सर्ब कला आपे परबीन, तह वेद कतेव कहा कूचीन। जब आपन आप उरतारै, तौ सगन आप सगन कहा बिचारै। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानहु आप। जह अशाल अशेद अभेद समाया, ऊहा किसै व्यापत माया। आपस को आपे आदेश, तेह गुण का नाही परवेश। जह एक एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह आपन आप पतियारा, तह कौन कथै कौन सुनने हारा। बहो बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप रचियो परपंच अकार, तेहो गुण में कीनो बिस्थार। पाप पुन तै पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल, होमै मोह परम पह पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप, जह पसरै पासार संत परताप। दोहू पाक क्या आपे तनी, उनकी शोभा उनहू बनी। आपे कौतक करै आनंद जोज, आपे रस भोगन निर्जोग। जिस पावै तिस आपन नाय लावै, जिस पावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगणत अतोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार। आपे एक आप बिस्थार, जा तिस पावै तां श्रेष्ठ उपाय। अपने पहने लय समाए, तुम ते भिन्न नहीं किश होए। आपन सूत सब जगत परोए, जाको प्रभ जियो आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत का बेता। नानक सगल श्रेष्ठ का जेता, जी जंत्र सब ताक है हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस रख है तिस कोई न मारै। सो मुआ जिस मन हो बिसारै, तेस ताज अवर कहां को जाए। सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ। अंतर बाहर जानो साथ, गुण निधान बेअंत अपार। नानक दास सदा बलहार, पूरन पूर रहे दयाल। सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप। अंतर जामी रहे ओ ब्याप, प्रतपालै जीअन बहु भांत। जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करहै हर की गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जानिया। जान लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक कौ सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इस ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पहे निर्वैर, आन दिन पूजह गुरु के पैर। ए लोक सुखिये पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। साध संग मेल करहो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। आठ पहर प्रभ

मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावहौ हलत पलत दोए लेहु सवार राम नाम अंतर उर पहार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परिखिया मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभाए खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवै जाहे तिस ते दूर कहां को जाए उबरै रखन हार ते आए निरपहो जपाए सगल पाओ मिटाए प्रभ कृपा ते प्राणी छुटा है जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पौछन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मात पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहो तिने हाल ताके निकट न आवत काल अमर पहै अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक सकट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत धरन माहे आकाश पयाल सर्बलोक पूरन प्रतपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पणी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखियत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल ना कबहू डोले सर्ब कलाकार खेल खेल मोल ना पाइए गुण है अमोल सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहे ओ स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं इहो बिसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्ब व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मानै करन करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनेक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्ब भूत आप वरतारा सर्ब नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जासो आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कह मध अलिप तो रहै जो किश कहना सो आपे कहै आग्या आवै आग्या जाए नानक जा पावै तां लै समाए
ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ਪੂਰਾ ਕਹੋ ਪਿਨੇ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤਮੀ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਣ ਸੰਗ ਰਾਚ ਤਾਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ

गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख स्वास स्वास सिमरह गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागहो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर करहो हर धन के पार ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रास पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन किरपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्कार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महा तो कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पय सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तहारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो तिने धान सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर ना होवै आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सांत रिद नावनित बुद्ध ज्ञान सर्वता है सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुम बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कूट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी।

संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै हुए सचियार धवलै उपर किता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया किता हुए किता तान।

तिस्ते हुए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावै कुवार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोल।

तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकूर, असंख चोर हराम खूर, असंख अमर कर जाहि जोर, असंख गल वड हत्या कमाहि, असंख पापी पाप कर जाहि, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करह पार, नानक नीच कह विचार। वारिया ना जावा एक वार, जो तुत पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह है सिर पार हुए, अखरी नाम अखरी शालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन एह लिखे ते सिर नाहे, जिव फरमाए तिव ते पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार। वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हथ पैर तन देहे, पानी धोतै उतर सखेहे, भूत पलीती कप्पड़ हुए, देसा बूण लइए उह धोए।

ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई क्यों करे आखा क्यों सलाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सबको आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जी कुआ पौ जाने अगे गया न सू है पाताल न पाताल लख आगास आगास कोड़ कोड़ कपाल थके वेद कहनिकवात सह सठारह कहनक तेबा असलू एक तात लिखा

माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मन हो न विसरह अंत न सिफती कह नयंत अंत न करना दे नयंत अंत न वेखण सुन नयंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाही ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोई बहुता कही है बहुता हुए वड्डा साहिब उच्चा थाओ उचे ऊपर उच्चा नाओ एवड उच्चा हुए कोए तिस उच्चे को जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाय किति मंगह जूद पार कितिया गणत नहीं विचार किते खप तुटह बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कितिया दुख भूख सदमार एह पेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने हुए राख न सकै कोय जे को खाए के आखन पाए वो जाने जितिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आखह से पे के जिसनु बख्शे शिव सलाहा नानक पातशाही पातशाहो अमुल गुण मुल वापार अमुल वापार ये अमुल भंडार अमुल लावह अमुल लै जाहे अमुल पाई अमुला सुमाही अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुल मुल आख्या न जाय आख आख रहे लिवलाय आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करह वख्यान आख बरमे आख इंद आख गोपी तै गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख है किते किते बुद्ध आख दान आख देव आख सुर नर मुन जन सेव किते आख आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे ताक न सकै केई के जेवड़ भावै तेवड़ होय नानक जाने साचा सोई जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखी है सिर गावा रंगावार सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्ब संभाले वाजे नादनिक संखा किते बावन हारे किते राग परी स्यो कहियन किते गावन हारे गावह तोहनु पौन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावै इंदिंदा सुन बैठे देव के आदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंतर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी।

जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर विख है कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी।

मुंदा संतोख शरम पद चोली ध्यान की करह विभूत खिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जी तै जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वा जहनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलाव है लेखे आव है भाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एक वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै।

आदनीलनाद अनाहत जुग जुगे कुवेश आसन लो एलोय पंडार जो किछ पाया सो एकावा कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदनीलनाद अनाहत जुग जुगे कुवेश एक दूजी बहु लख होए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ाया की है एक नाम जगदीश ए तेरा

अजाद हैं, चरपट छंत्व प्रसाद, सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद। नमो नर्क नाशे सदैव प्रकाशे अनंगम स्वरूपे अपंगम विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामेन्द्र भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात्य न मात्य न जात्य न पात्य न साकं सरी कह मितो अम्बी कह सदैव प्रभा है जय जय है भगवती छंत्व प्रसाद। कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामिल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी ध्यान दे कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरा सुलफिकन है कलंकंक प्रनाश है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंक प्रनाश है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है कि सर्वल गवन है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधीशुल अलीख है हमेशुल अपीख है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मद पार छंत्व प्रसाद। मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर भंजु अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड अनपवनाश मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम अंश जंग सुन अपंग उपमा पार गुदार जल तल अमंड दिस्विश अपंड जल तल महंत दिस्विश बेअंत।

काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज न बात अनछंज गात अनरंज बात अनपुट भंडार अनडट अपारा डीट कर्म अत कीट कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर भूल मना चंतव प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंकर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है अकृता कृत अमृता अमृत अमृत अमृत करुणा कृत अकृता कृत धरणी त्रित अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृता अमृत जबा कृत अमृता अमृत निर्णायक है खलकायक है विश्वंपर है कुरुणालय है निपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म भस है जस की जस है भुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे कचरी छंद अजय अलय अभय अभय भू अजू अनाथ कास अगंज अपंज अलख अपक काल दयाल अलेख अपेख नाम काम गह अटा अनाथे परमाथे अजो नियमो नि नागे नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग वेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग वेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमूल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनि में हरियं करियं करिमूल रही में चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरे कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूंते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग नूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूत पौन के गौन कुजात निवारे पारी बजान की भूप भली बिद न्यावत शीश न जात विचारे इते भय तू कहां पै भूप।

सबै सुविचार हजार के दिखै। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै, शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाहा सुशासना दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे, तोर हरिन मरूर वासन माति मतंग मान मलेंगे। श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की तार पसैया, तोर्त देश मलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया, सैब श्री सबको सिरनायक जाच गनेक सुवेक दिवैया। दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे, उन पर तापन बाढ़ जाय तुन पापन के वो पुंज खपेंगे, सास प्रसन्न फिर जग सतर सुबैव लोक छपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र निराधव जोन त्रलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजाति गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे, ब्रह्म ही सर्विषण सचिव बतंत हुसे जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के प्रसह पग ते नर फेर न दे तरेंगे, कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो, भक्त ध्यान लगायो नाथ फिर सा सुमंदरन लोक गयो, पर लोक गवायो बास कियो, बख्यान सुबैठ कैसे ही ऐसे सुबह सुतायो, साच कहो सुन ले हो सुबह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर वाची दिशा में, काहू पछा को शीश निवायो, को बतान को पूजत है बस, को मृतान को पूजन तायो, पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भी

सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौकई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आ सुंदरिय, पूर्ण होए हमारी आसा, तुर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो भर चाहूं सो तुम थे पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हु जो सदा हमारे पच्चा, श्री आस तुझ जू करे और अच्छा, राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो, पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव की यो वेदराज, ब्रह्मा ज्योति यो जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहि हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन उपजायो, आद अंत्य कै अवतारा, सुई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को बल मुबद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन की सुखी, एक एक की पीर पहचाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उत्कर्क करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सिर सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब, ताका मूड उचारत भेदा, जाकु भेव न पावत भेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं भेव, आप अपनी बुद है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जा

0: सुकर जित सैर जाए सुध।
1: गुरु प्यारे खालसा साध संगत जीओ, आओ हुण अज दे मुख वाक दे विचार सत्कारयोग यानी परमजीत सिंह जोरा पासों सरवण करिए जी दस रहा पासों होईआं फुल्लां दी खिमां बख्श दोए पते दी सांझ पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

तुमरे गत मित तुम्ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस चिट्ठे शब्द सुजाय तेग बहादुर सिमरया करनौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब महाराज जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ चदारदा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख वाही देख केंडट कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ना चराए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिक्खी केसा स्वासां सिंघ निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित्यावै चित्तावन का सदका सर्व सुखोय जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियाय तु देखते फते बिरद के पाए पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहतान विवेक दान विसहदान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चुक्कियां झंडे पंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मरणे वा मत उची मत पत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता अर्जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शियो नमाण्यो के माण नितान्यो के तां न्योटिया दियो सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे चरणा अरदास बेनती महाराज जी आप जी दी महान बख्शिश हुई अमृत वेले आप जी ने अपने तख्तां ते प्रकाशमान होके संगत नूं दर्शन दिदारे बख्श के निहाल कीता है अमृत वेले पावन हजूरी अंदर दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन होए ने उपरंत आए दे हुक्मनामे दियां विचारां होईयां छे पौड़ियां अरंत साहिब दे जप होए महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़दिआं कीर्तन करदिआं विचारां करदिआं आप जी की सेवा संभाल करदिआं होईयां बेअंत फुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते सवत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालूतम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे हिरदिआं ते वसाउणा आईयां संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों कोलों नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाई गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदिआं आप जी का धन्नवाद करदिआं बेअंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती महाराज जी सारी संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी सिख पंथ विच
ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਛਕਿਆ ਆਪਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ऊपर चरण तलय आकाश कट में सिंध कियो प्रगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमक न बिसरे जी भगतन कै।

नानक दास कंठ लाए राखी, कर कृपा पार ब्रह्म मया। राम कली महल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा न जाई रहा। दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी धूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सुवारे सगले तन के। जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। पतत उदाहरण कृपा निदान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजह विकार बिनसे अभिमान। एक तिहाइए साध कै संग, पाप विनाशे नाम कै रंग। गुर परमेश्वर सगल निवास, घट घट रव रहिया गुणतास। दर्श देहे तारू प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महल्ला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइय। आवा गौण मिटै मेरे मीत, रहाओ गुण गाव।

रहाव। एक अराधु साचा सोए, जाकी सरन सदा सुख होए। नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करहु मेरे भाई, गुरपुरै सब चिंत मिटाई। आठ पहर प्रभु का जप जा।

नर नर है नमस्कारं जलन थलन वसुध गगन एक एक अंकारं रहाओ हरन तरन पुन पुन है करन नह गिरह निरंहारं गंभीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपारं करन केल गुण अमूल नानक बलिहारं राम कली महल्ला पंजवा रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले माया चले कनिक कामनी रहाओ भंडार दर्ब अर्ब खर्ब पेख लीला मन सुधारै नै संग गामनी सुत कलत।

जाते दुर्मत सगल विनाशै, राम भगत मन भीजै रहाओ। मन माया में उर्ज रहे है, बूझै ना है कछ ज्ञाना, कौन नाम जग जा कै सिमरै, पावै पद निर्वाना। भये दयाल कृपाल संत जन, तब एह बात बताई, सर्व धर्म मानो तेह किए, जेह प्रभ कीरत गाई। राम नाम नर निसबासुर मह, निमख एक उर धारै, जम को त्रास मिटै नानक, तेह अपनो जन्म सुवारै। राम कली महला नौवा, प्राणी नारायण सुदले, छिन छिन औद कटै निसबासुर।

रहाऊ। काल कल वाली सरा नबेड़ी काजी कृष्णा हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया। पतविन पूजा सतविन संजम जतविन काहे जनेऊ, नावह तो वह तिलक चढ़ावह सोच विन सोच न।

ताप गुर कै शब्द रचै मन भाई भिख्या सहज विचारी खाई भस्म चढ़ाई करह पाखंड माया मोह सह जम डंड फूटै खापर भीख न पाई बंधन बाध्या आवै जाई बिंद न राखै जति कहावै माई मागत त्रै लुभावै निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला भेख करह खिंथा बहु सटुआ झूठो खेल खेलै बहु नटुआ अंतर अगन चिंता बहु जारे विण कर्मा कैसे उतर सुपारे मुंद्रा फट

राम भगत जम का बहु पागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल राम निर्मल नाम हृदय हृदय हर सोहे। शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अनदिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गत अंतर पाई, अलिप्त गुफा मह रह निरारे, तस्कर पंच शब्द संगारे, पर घर जाए न मन डोलाए, सहज निरंतर रहूं समाए, गुरमुख जाग रहे अवधूता, सद बैरागी तत् परोता, जग सूता मरिया वह जाए, बिन गुर शब्द न सोजी पाए, अनहद शब्द वजै दिन राती, अविगत की गत गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी, सुन समाद सहज महराता, ताज हो लोका एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला।

गुर कै भाणे कर्म कमावे, नानक साची साच समावे। राम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया चीजे, वर्त तपन कर मन नहीं पीजे। राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे। जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस न

चाड़स पवन सिंहासन पीजै, न्यौली कर्म खट कर्म करी जय, राम नाम बिन बिरथा सास ली जय, अंतर पंच अग्न क्यों धीरज ती जय, अंतर चोर क्यों साध लही जय, गुरमुख हुए काया गढ़ ली जय, अंतर मैल तीर्थ पर भी जय, मन नहीं सूचा क्या सोच करी जय।

मन तृप्त नहीं थी जय। मानमुख जन्म जन्म मरी जय। खाहे मानमुख जन्म जन्म मरी जय। सतगुर पूछ संगत जन की जय। मन हर राचे नहीं जन्म मरी जय। राम नाम बिन क्या कर्म की जय। ऊंधर धुंधर।

है सच नाऊ, तुम शरणागत रहू सुभाऊ, तुम ते उपजियो भगति पाऊ, जप जापौ गुरमुख हर नाऊ, औ मैं गर्भ जाए मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द

एक मैं सर्व सर्व मैं एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिभवन जोत दिखाई सच्चै तख्त सच महली बैठे निर्भउ ताड़ी लाई।

प्रभु की छूटे सतगुर सच सखाई। राम कली महला पहला औहठ हस्त मड़ी घर छाया धरन गगन कल धारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हों मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाहद वाजै घट घट जोत तुम्हारी परपंच बेण तही मन राखिया ब्रह्म अग्न प्रजारी पंच तत् मिल अहनिस दीपक निर्मल ज्योत अपारी रब सस लौके इहो तन किंगुरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मैं आसन औधू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसै विचारी शब्द रवै आसन कर राजा अदल करे।

जत सत शब्द विचारी शब्द मरै मन मारे औधू जोग जुगत विचारी माया मोह पवजल है औधू अवधू शब्द तरै कुलतारी शब्द सूर जुग चारे औधू बाणी भगत विचारी इहु मन माया मोहया औधू निकसै शब्द विचारी आपे बक्से मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदिया।

सो जोगी कहिए। एक सुस्यो चित लाए सहसा टूटे निर्मल हुए, जोग जुगत इव पाए नदरी आवदा सब किछ बिनसै हर सेती चित लाए। सतगुर नाल तेरी भावनी लागे ता इह सोजी पाए।

सतगुरु महाराज कृपा करन हर साल ये शहीदी दिहाड़े बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर कैसे हिरदे सन, इन्हां दे माता साहिब कौर, माता सुंदरी जी, माता जीतो जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी। ऐसा ना हो साल लंघते जाण पर साडा जीवन ना बदले, गुरु दे होर भी नेड़े होइए, सुवास सुवास जपिए, सतनाम श्री वाहिगुरु। फतेहगढ़ साहब चमकौर की गड़ी नूं हमेशा अपने अंदर वसा के रखिए, वो साडे वास्ते यूनीवर्सिटी है, सिक्खी का स्कूल है। आओ बड़े प्यार नाल कीर्तन की सेवा भाई साहब जी, भाई हरप्रीत सिंह जी हाजरियां भरणगे, बेअंत फुल चुक दी खिमा असीस देव, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।

करो कृपा एक बार, एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत वड्डा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही है, सो बेनती है एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना है। असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आपां गाण वास्ते आए, फिर एक शब्द की हाजिर होर भर के बहुत ही सत्कार हो गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा जी, वह भी पहुंच चुके हैं दासियों के बाद, उन्होंने हाजिरी भरनी है। सो करो कृपा उची आवाजाएं चाहिए।